एसोस एलजी ले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी लाइफ्स गुड।

0: It's 7 a.m.
1: Subhaprabhat.
2: इस टाइम चेक का साथ में जय पृथ्वी अस्पताल प्राली जैनपुर बझांग हमारा सेवाहरू विशेषज्ञ डाक्टर तथा चिकित्सक द्वारा बिरामी को चेक जांच तथा उपचार रंगीन भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे तथा एसीजी सेवा अत्याधुनिक प्रयोगशाला जनरल अपरेशन सुपथ फार्मेसी का साथ ही होल बॉडी चेकअप गरिन्छ फोन 092-4167 र मोबाइल 98-58-4464
3: तपाईँ अहिले जय पृथ्वी एफएम सुनिरहनु भएको छ। अब अगाडि प्रसारण हुँदैछ रेडियो नेपालबाट प्रसारित समाचार।
4: निकट पानी पुनर्भरण, सार्वजनिक खुला क्षेत्र, वन क्षेत्र, ताल तलैया र नदी संरक्षणको अभियानमा आजदेखि जुटौं।
5: काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा जनहितमा जारी जलवायु अनुकूलन सन्देश।
6: यस बेला बिहानको 7 बज्ने लाग्यो। अब सुन्नुहोस् समाचार।

0: जय पृथ्वी एफएम 96.3 मेगाहर्ट्ज मानवता को आवाज।
1: अबको प्रस्तुति
2: निरन्तर दोहरी गीतहरू